0: तो मैं आएंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
1: बंदूक कौन होता है?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं।

0: बाजी तोर बाजा आ गए मोटीगंज के राजा।
1: ए बेटा, तुम्हारी हैसियत के डीजे वाले

इस घर में है कोई माइकलाल जो हर कभी चंदा कर दे सकता है। दम है तो रोक ली, दम है तो रोक ली। हरिगोविंद बाबा हाईटेक, सामने से हट जाइए, अब मैं डीजे पे कदम रखने वाला हूँ।